0: 6.9 को शानदार डिस्प्ले, AI powered camera, 2 वर्ष को वारंटी सहित Redmi A7 मा 5200 mAh तथा Redmi A7 Pro मा 6000 mAh powerful battery को साथ थप अत्याधुनिक विशेषताहरूले तपाईको मन जित्छ बारम्बार।
1: मध्य पश्चिम FM 91.4 MHz।

0: वायरनेट को बाई वन गिफ्ट वन फ्री अफर में तीन महीना को 125 एमबीपीएस इंटरनेट और 2700 में खरीद कर सोई इंटरनेट पैकेज नया जड़ान को लागि गिफ्ट करने मौका सफल रेफरल में आपको लागि एक महीना फ्री इंटरनेट वायरनेट अब सब कनेक्टेड
1: हमी जन्मजात नहीं शिकारी हूँ शिकारी पूरे टैलेंट मलाई चाहिए
2: VFX सिनेमास कुराही दस नारायण पुरसौडी कुला दाङमा एक्शन नायक विराज भट्टद्वारा अभिनीत भव्य प्रदर्शन भइरहेको छ नेपाली कथानक चलचित्र राम

0: वायनेट को बाई वन गिफ्ट वन फ्री अफर में तीन महीना को 125 एमबीपीएस इंटरनेट और 2700 में खरीद गर्दा सोही इंटरनेट पैकेज नया जडान को लागि गिफ्ट करने मौका सफल रेफरल में आपको लागि एक महीना फ्री इंटरनेट वायनेट अब सब कनेक्टेड
1: मध्यपश्चिम टाइम चेक यति बेला बिहानको 10 बजेको छ।

0: सभी भन्दा ठुलो जुत्ता चप्पल को शानदार घर
1: नेपाली जुत्ता घर। हामी कहाँ नेपालका 10 भन्दा बड़ी ब्रांड का आकर्षक जुत्ता चप्पल नया वर्ष को उपलक्ष्य में सीमित अवधि का लागि 10% देखि 50% सम्म बम्पर छूट।
0: अब ढिला नगर्नुहोस्, आफूलाई मन पर्ने जुत्ता आफै छान्नुहोस्।
1: स्वदेशी उत्पादन को प्रवर्धन गरौं। स्थान सिटी प्लाजा होटल को उत्तर पट्टी थारू गल्ली हुराही दाल।
0: संपर्क मोबाइल नंबर 98577146।

0: वाय नेट को बाई वन गिफ्ट वन फ्री अफर में तीन महीना को 125 एमबीपीएस इंटरनेट और 2700 में खरीद कर फ्री इंटरनेट पैकेज नया चरण को लागि गिफ्ट करने मौका सफल रेफरल में आपको लागि एक महीना फ्री इंटरनेट वाय नेट अब सब कनेक्टेड
1: तपाईं यति बेला सुन्दै हुनुहुन्छ कार्यक्रम टिचिङ टाइम। यदि तपाईँ पनि आफूलाई मन परेको गीत सुन्न चाहनुहुन्छ भने हाम्रो स्टुडियोको टेलिफोन नम्बर 5784594 डायल गरेर आफूलाई मन परेको गीत सुन्न सक्नुहुन्छ।

इम्पोर्टेड आशिक हूँ बट यू माय लव क्या जाने, लंदन से अमेरिका तक मेरे कितने दीवाने, आई कम इंडिया फॉर यू डार्लिंग, तू माने या न माने।

राम राम सन्जे पाँच बजे थारू भाषक मध्य पश्चिम खबर में सारिक राम चौधरी हार्दिक स्वागत बा। लुम्बिनी प्रदेश सरकार आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयका आयोजना तथा नेपाल पत्रकार महासंघ लुम्बिनी प्रदेशको समन्वयमा पत्रकार हुकनकला तीन दिने क्षमता विकास कार्यक्रम प्रदेश राजधानी भालुबाङमा शुरू रहल।

0: आवाज पश्चिम नेपाल को आवाज आवाज हिंदको आवाज यो हो रेडियो मध्य पश्चिम एफएम 91.4 MHz।
1: स्वास्थ्य क्षेत्र में विश्वासिलो ठाउँ, कोई कसैलाई रोग लागे गोखा अस्पताल जाऊ। सर्जन, फिजिशियन, हाड़ जोड़ने, नसा, प्रसूति, रेडियोलॉजी, एनेस्थेसिया, बाल रोग, थायराइड, प्रेशर, सुगर, छाती, मुटू, नाक, कान, घाटी, टाउको को गैस्ट्रिक अल्सर, फिजियोथेरापी, दूरबीन विधि पर ऑपरेशन लगाए स्वास्थ्य संबंधी सब

0: 94 मेगाहर्जमा तपाईहरु सुन्दै हुनुहुन्छ रेडियो मध्यपश्चिम।
1: ओखति साबुनको अर्को प्रस्तुति बहुगुणी ओखति आयुर्वेदिक तेल। लामो अनुसन्धान पछि आविष्कार भएको रुगा खोकी नाकबन्द जिउ दुखेको आदि सबैका लागि एकमात्र अचूक तेल जडीबुटीको शक्ति ओखति आयुर्वेदिक तेल मात्र रु 50 मा।
2: खुराहीको लागि आधिकारिक विक्रेता भूषाल स्टोर हस्पिटल रोड खुराही दान। फोन नम्बर 082-585-210। थप सम्पर्कका लागि हिमालय स्टोर बाल मन्दिर अगाडि, निरज स्टोर सब्जी मण्डी नजिक र प्रवेश श्रृङ्गार दूरसञ्चारदेखि पश्चिम तर्फ।
3: सम्पूर्ण विशेषज्ञ सेवाहरू अब एउटै छानामुनि।
4: वरिष्ठ हार्ट जोड्नी तथा नसा रोग विशेषज्ञ डाक्टर अनिल यादव बुद्ध इन्टरनेसनल हस्पिटल प्राली घोराहीमा।
5: डाक्टर अनिल यादवद्वारा दिइने सेवाहरू:
4: हात खुट्टा भाँचिएको, हात खुट्टा झमझमाउने, ढाड कम्मर दुख्ने, हार्ट जोड्नी सम्बन्धी अपरेशन सेवा।
6: अन्य विशेषज्ञ सेवाहरू: वरिष्ठ फिजिसियन डाक्टर अभ्यास पोखेलद्वारा बिरामी चेक जाँच सेवा,
7: वरिष्ठ सर्जन डाक्टर रमेश बस्नेतद्वारा बिरामी चेक जाँच तथा अपरेशन सेवा,
8: नसा तथा मानसिक रोग विशेषज्ञ डाक्टर सुबोध कुमार शर्मा द्वारा बिरामी चेक जाँच तथा उपचार सेवा,
6: वरिष्ठ स्त्री तथा प्रसूति रोग विशेषज्ञ डाक्टर विमला तिवारी द्वारा चेक जाँच तथा अपरेशन सेवा,
8: वरिष्ठ बाल रोग विशेषज्ञ डाक्टर विज्ञान केसी द्वारा बिरामीको चेक जाँच तथा उपचार सेवा,
6: वरिष्ठ रेडियोलोजिस्ट डाक्टर अनिश आचार्य द्वारा भिडियो एक्सरे सेवा, साथै इन्डोस्कोपी, कोलोनोस्कोपी, सिस्टोस्कोपी, इको, कल्पोस्कोपी, सिटीजी लगायतका अत्याधुनिक प्रविधिका सेवाहरू।
3: सम्पर्क बुद्ध इन्टरनेसनल हस्पिटल प्राली, सडक विभाग ओह्रालो, घोराई जाँच। फोन नम्बर 082-585-210।